गावन से मैं चतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन पाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहण रजाई आसा महला पहला

रास गोरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन केवड़ भाग वडेरे जन हर हर शरदार प्यास हर हर नाम मिला त्रपता सै मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा।

प्यारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अभर न जाना।

सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां।

गुरु प्यारेओ आज सिखी अते सिख आपस दे विच सवाल जवाब कर रहे ने। सिखी कह रही है के सिखा मैं खंडियो सिखी हां, तू मेरे ते चल नहीं सकदा। ते जेड़ा सिदक दा पक्का सिख है ना सत संगियो, ओ कहंदा सिखिए भावे तू खंडियो सिखी है पर मैं भी उस कलगी तार दशमेश पिता दा सिंह है जिन्हें सिखी नू बचाउन दी खातर सिख पंथ नू बचाउन दी खातर अपना सारा परिवार वार दिता सी। ते गुरु प्यारेओ कलगी तार पिता सिख नू सेध दे रहे ने। आज सिखी दे ते सिख दे सवाल जवाब हो रहे ने। सिखी कहंदी के सिखा भाई तारू ने, भाई दयाले ने, भाई मते दास ने मेरे ते चल के की लिया। उना नू मरना ही पिया ना, इस जहान तो जाना पिया। ते गुरु प्यारे हो जेड़े सिदक दे पक्के सिख ने ना वो कदी नहीं डोल दे। आज पुले पटके सिखानू मेरा वीर दविंदर सैफी अपनी कलम नाल यूं कह रहा है। तू कहंदा कि सिखा ओए तू तत्ती तवी तक लेके जान वाले इल्जाम भी वेख, फिर कैद कीते सच्चे पातशाह दी शान भी वेख। किते नीहां च चिणिया दी आन वेख, किते बुल्ले दी बागी जुबान वेख। काश तेरा सत नाल जरा भी संग होया हुंदा, तेरे मौन दी महक बेहे फुल्लां दे हारां नूं तैथों पासे हटाउंदी। तेरी बंदगी चैन शाहत बल बना दी सेवा ठुकराउंदी। जे तू सिदक विच पक्का हुंदा है ना, जे तू सिदक विच पक्का हुंदा तेरे शब्दां दी अग बाबरां नूं ललकार दी। तेरी तीजी अख दी उचाई सिकंदरां नूं टिच कर जान दी। ते गुरु प्यारेओ ओ कह रहा है काश जे तेरा सत नाल जरा भी संग होया हुंदा, तू अपने जोगी काल काल के कूड़े भरी देह नू पसीना लिया के पूरा सुची कर लेंदा। बगला वेस त्याग के नित दिहाड़ी दी दिखावे दी खातर ओए तोता रटन छड़ जांदा। ते गुरु प्यारे हो करगी तार पिता ने भी आख्या सी भी साडा सिख भेखी ना होवे, ओ कहनी ते करनी विच पूरा होवे, सिदक दा पक्का होवे। आज सिखी अते सिख दे सवाल जवाब हो

पवित्र श्री मुख पर सहज दी धरती मैदाने जंग छिदराने दी ताब अज भाई महा सिंह कलगी धर पिता दी गोद विच पिया बेनती कर

प्यारियो अज कलगी धर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पवित्र श्री मुक्तसर साहब की धरती से जदों जंग होया युद्ध होया है ना जेड़े सिंह शहीद हो गए सन कलगी धर पिता उना दे कोल जाके हर एक सिंह दा प्यार नाल मूं अपने चोले दे पल्ले नाल साफ करके दोहां लोका दे सुख बख्श रहे ने। आज कलगी तर दा तार पातशाह किसे नू 20,000 किसे नू 30,000 अते किसे सिंह नू कहण भई इस दी लखा उते सरदारी होवेगी वर दे रहे ने। जिन्ने भी कदम कोई सूरमा अपने मोर्चे तो अगे होके लड़के शहीद होया सी ना ओना ही वड्डा ओनू सुख ते मान बख्श के नवाज रहे ने। कलगी धर पिता ने वेख्या इन्हा 40 सिंघां विचों एक सिंह अजे भी सहक रहे है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उदे कोल बैठ के प्यार नाल दलासा दे के कह रहे ने महासिंघा खोल अखा देख असी तेरे पास बैठे हैं। भाई महासिंह ने कलगी धर पिता दे मिठे बोल सुने अखा खोलिया देखिया ता हाथ जोड़ के धीमी आवाज नाल बेनती कीती सतगुरु अंत समय तुसा दे दर्शन होए ने मेरे मन दी इच्छा पूरी हो गई है मैं बड़ा खुश हाँ। बादशाह कहंदे महासिंघा असी तेरे ते बड़े खुश हैं जे तू जिउणा चाहे ता असी तेरे प्राण रख लैने जे तू कुछ होर मंगना चाहे ता

कि सतगुरु जे दुखे हो ता माजे दी संगत ने जेड़ा तुहानू विधावा लिखे दिता सी ना ओ पाड़ देओ, जिस करके वो तुहाडे सिख ते तुसी उहना दे गुरु बने रहो। पातशाह कहिंदे महा सिंघा जो सिखी टुट गई है वो निखुट गई है, जेड़े सिखी डर करके गुरु तो हट गई है उसनू तू क्यों मेलदा, अपने वास्ते कुछ मंग लै। ते प्यारियो अज भाई महा सिंह हाथ जोड़ के यही कह रहा है, पातशाह पुत्र सदा ही भुलदे ने पर पिता उन्होंने अपने जान के बख्श देंदा है। मेरी एहो इच्छा है कि टुटी गंढ लवो, टुटी सिक्खी नू मेल लो, कोई इच्छा नहीं। भाई महा सिंह ओदी गल सुनी, पातशाह कहंदे महा सिंघा तू धन है, तू धन है, तेरे मन विच एक परोपकार दी गल भी वसी हुई है ना। ते सतसंगियो ए आख के सतगुरां ने बेदावे दा कागज अपने जेब विचों कढ़िया पाड़ दिता ते आख्या महा सिंघा तू सदा ही गुरु लोक विच वसेगा जिथे कदी दुख ते कलेश नहीं हुंदा। सतगुरां दे बचन कहण दी देर सी, सत संगियो महा सिंह ने प्राण त्याग दिते, परलोक नू चलिया गया। उस तो उपरंत गुरु प्यारियो सतगुरां ने 40 सिंघां दा संस्कार कीता, जिस करके इस जगह दा नाम शहीद गंज है। जेड़ा इस नू श्रद्धा नाल नमस्कार करदा है उसका सिखी सेवक अते प्रताप वध जांदा है। ते गुरु प्यारियो जे अज आपा भी सतगुरां नालों टुट चुके हैं, गुरु नू भुल चुके हैं, ते जे अरदास करांगे बेनती करांगे सतगुरु तुसी सानू चरणा नाल जोड़ लो, सतगुरु अपने चरणा नाल जोड़ लेंदे ने। सतगुरां दा बिरद है जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संदा। अज भाई महा सिंह अपनी गलती ते पछता के बेनती कर रहा है, सतगुरां ने बख्श दिता। ते गुरु प्यारियो जेड़ी ओ माता ओ माई भागो ये 40 सिंघां नू लेके आई सी ना, ते गुरु प्यारियो ओ भी तुरकां नाल लड़दी लड़दी फटड़ हो गई सी। जदों सतगुरु ताब दे किनारे शहीदां नू मुक्ति दे वर दे रहे सन, एक सिंह ने आके आखिया पातशाह एक इस्त्री भी फटड़ होई पई है, चल के देखो। पातशाह ने वेख्या ते गुरु प्यारियो हस के कहन लगे, पुत्रा कारण ही आही पीरी, सुथन लाहे लई फकीरी। गुरु प्यारियो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने ए लफज सूरज प्रकाश विच आखे ने कि तू पुत्र लैण वास्ते गुरु पास आई है, जनाना वेश उतार के मर्दावा धारण कर लिया है, तू चंगा कीता है, धर्म दी खातर लड़के फटड़ होनी है, तू धन है, तेरा आया होया धन है, तेरे वास्ते गुरु नानक ने सचखंड दे दरवाजे खोल दिते ने। पातशाह कहंदे माई भागो तू निहाल है, तेरा जन्म मरण कटिया गया। पातशाह कहंदे के तू माझे दी सिक्खी रख लई है। ते गुरु प्यारियो माता भागो कहंदी पातशाह मैं ता तुहाडे तो पुत्र दी बख्शिश लैण वास्ते भी आई सी, सिंघां नू ता मैं तैयार करके लियांदा ही लियांदा है, पर पातशाह तुसी मैनू मरन तो

हाथ देखे बचाले है मैं फटड़ हो गई सा। जदों मैं युद्ध हुंदा वेख्या मैं भी वर्षा फड़ के युद्ध विच शामिल होई सी। तुसी कृपा कीती है ते गुरु प्यारे हो ओ माई भागो बड़ी सत्कार योग हस्ती होए ने माई भागो दा अकाल चराणा हजूर साहब विच जाके होया सी जिथे इस दे नाम दा बूंगा बनिया होया है। गुरु पातशाह दे चरणा च कोई भी अरदास करे नीमा हो के गलती मन के सतगुरु बख्श देंदे ने खाली झोलियां भर दें।

गुरु प्यारे हो कलगीधर पिता साबू की तलवंडी दमदमा साहेब अपना सारा परिवार वार के सिख पंथ तो बैठे ने दीवान सजिया होया ते गुरु प्यारियो कुछ सिंह उठे जिन्हां ने पहलो ही सलाह बनाई सी पातशाह नूं पुछण दी। वो कह रहे ने कि दाता तुसी अपना सारा परिवार सिख पंथ वास्ते ए भी आन नूं शान नूं कायम रखण वास्ते वार दिता है, सतगुरु तुहानूं की मिले है? वेखो गुरु प्यारियो ते कलगीधर पातशाह कहिंदे कि सिंगो सानू जिहड़ी सिखी है ना वो अपनी जान नालों भी प्यारी है। ये परिवार ये बच्चे तां कुछ भी नहीं, ये सानू सिखी अपनी जान नालों भी प्यारी है। ते सतसंगियो अज वेखो अज जेड़े धर्म दे ठेकेदार ने ना अज जेड़े धर्म दे ठेकेदार बने फिरदे ने ओ दिखावा तां करदे ने पर उहनां नूं सिखी नहीं प्यारी। कलगीधर पिता ने परिवार वार दिता है ते गुरु प्यारे अज धर्म दे ठेकेदार पैसे खातर कुर्सियां दी खातर आपस विच एक दूसरे नू मार रहे ने। ये साड़ी श्रद्धा किधर गई? सतगुरां ने किन्निया कुर्बानियां दित्तियां साडे लई। ते गुरु प्यारियो एक मेरे वीर दविंदर सैफी जी मोरां वाली तो अपनी कलम नाल साड़ी श्रद्धा बारे लिख रहे ने कि कित्थे क खलोती है, सानू झंझोड़ भी रहे ने। उन्हां ने लिखिया बड़े वैराग दे विच ओ गुरु कलगीधर पिता नू सरमुख जान के लिख रहे ने ते सानू झंझोड़ रहे ने, लिख रहे ने ऐ पातशाह ऐ शहनशाह ऐ ताजदार ऐ राजदार अज असां दा खून वेख लै ठरदा ठरदा ठर गया। कलगीधर पिता तेर असाडे अंदर वाला अज मरदा मरदा मर गया। कलम अंदर जापदा कोई घुणदा कीड़ा वड़ गया। हे परम पिता बड़ी देर हो गई है इकट्ठे बैठिया नू दिल सांझे कीतिया नू तेरी रहमत दे बाटे पीतिया नू। हे परम पिता असी रुल गए हां तेरी प्रीख्या दी ललकार भुल गए हां। तेरे शब्द याद ने तस्वीरां आवाद ने बस्तर असी तेरे साम के रखे ने साखियां भी याद ने। हे दातार शब्दां दे अर्थ अर्था ते अमल अमला ते पैरा कौन देवे। आज दे गुरु प्यारे खुद गर्ज जेड़े सिख कहलाउंदे ने ना अपने आप नू खुद गर्ज लोकां दी गल मेरे वीर कर रहे ने। कहंदे ने शब्दां दे अर्थ अर्था ते अमल अमला ते पैरा कौन देवे। तेरी तस्वीर तस्वीर अगे कुछ सिक्के अगरबत्ती ते मंगा दे तेर एदू अगे किवें वधिए। तेरे बस्तरां नू कटार नू खंडे नू नमस्कार इना नाल जुड़ी साखी सुन के झूमना
कुछ देर कहना वाह भाई वाह बल्ले होर की है साडे पल्ले दाता अज असाडी जीव ते बुझ दिली दा तेजाब छाले कर गया ताइयों खून असादा अज ठरदा ठरदा ठर गया है परम पिता तेरे अदुत्ती अमृत ने एक शेर जगाया सी तेरे अदुत्ती अमृत ने एक शेर जगाया सी इस शेर ने वखरा ही राज योग कमाया सी अपने आप नू दो जहाना दा वाली बनाया सी तुसा प्रेम दे फुला नू बेशर्त वरसाया सी मानस की जात एको वार वार फुरमाया सी पांच नदियां नू एक सागर विच मिलाया सी यारड़े दे सथर नू गल नाल लाया सी हे परम पिता अज ओ लफज जो जफर नामे बनने सन खुशामदियां ने खा लए औरंगजेब इस समय दे ऐसा चोगा पा गए आजादी दे पैगाम तो साडे कबूतर भी घबरा गए चिड़िया तो बाज बनाउन वाला प्रसाद भी हुण तां असी एक रस्म समझ के खा गए ताई दिल दा बाज उच्चियां उडारियां तो डर गया ए पिता अज खून असादा ठरदा ठरदा ठर गया परम पातशाह अजे तक ता असी तेरी तलवार दी वरतों तेरे प्यारे सिख नंद लाल नू नंद सिंह बनाउण लई ही कीती सी अपने चिट्टियां पग्गां वाले सिर ते मखमली हाथ तेरे अगे धरदियां साडी उमरा बीती है तेरे तख्तां ते लगी चढ़ावियां दी ढेरी किधरे लुक छिपके ते किधरे सब दे सामने असा अमृत समझ के पीती हे सतगुरु अजे नाता साडे पास तेरे रंगरेते बेटियां दी पाटी चादर सियोन दी वेल है ते ना ही अपने मना अंदरले बेदावियां नू तेरे प्रेम दी आग विच फाड़न दी कदे कोशिश कीती है साडी बिखरी चेतना दा हर पत्थर एक दूजे दा जखम डुंगेरा कर गया ऐ पातशाह अज खून असा दा ठरदा ठरदा ठर गया ऐ दातार अज खून असा दा ठरदा ठरदा ठर गया गुरु प्यारेओ अज दे खुद गर्ज लोग धर्म दे ठेकेदार गोलकां दा पैसा खा के कुर्सी नाल प्यार करके सिखी भुल गए ने जिस सिखी नू सतगुरां ने आख्या सी ए सानू साडी जान तो भी प्यारी है।

एको बहुरंगी सब एकत बचन चलावे गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावे गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहत शब्द बजावे गो जी जंत सब से

सतगुर मिलत महा सुख पाया, मत मलीन बिगसावै गो, हर हर कृपा करहु जग जीवन, मैं श्रद्धा नाम लगावै गो, नानक गुरु गुरु है सतगुर।

तलकुंडे गुरियंकस शब्द दरड़ा वैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिवला वैगु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुआ वैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिवला वैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढ़ा वैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढ़ा वैगु त्राहे त्राहे सरन जन आई गुर हाथी दे निकला वैगु सुपनंतर संसार सब बाजी सब

सतगुर शरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गु रहाउ सतगुर महापुरख है।

राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरह तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीव है हर अम्यो पीव है, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याई है, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांच है, हर दर्स सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइय नित त्याइय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बांधो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखागामी, इच मन की पुनिया बजी बधाई।

कानड़े की वार महला चौथा मूसे की वार की धुनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा राम नाम निदान हर गुरमत राखे और तार दासन दासा हुए रहो हम मैं बिखिया मार जन्म पदार्थ जीतिया कदे ना आवै हार तन तन वड भागी नानका जिन गुरमत हर रस सार महला चौथा गोविंद गोविंद गोविंद हर गोविंद गुणी निदान गोविंद गोविंद गुरमत त्याई है तां दरगाह पाई है मान गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

हर जपियो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वरतदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कबला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव हुदान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव है हर गुण संत महला चौथा हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात दिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुरु पुरख सब सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस से गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजिया सब धन कहो गुर सत गुरु गुर सत गुरु जित मिल हर पर्दा कजिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन चित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सतगुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपी है सतगुर पाई हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाय हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाई हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाय जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हम वारिया तिन को सद

है, जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवण जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराहे, सब कटम तरावे, जन नानक तिस बलिहार न, जो मेरे हर प्रभ पावे।

राय अंतरजामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी। रहाउ बसै कटा कट लीप ना शीपै, बंधन मुक्ता जात ना दिसै। पानी माहे देख मुख जैसा।

0: तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाल हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत करह तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरों दिन राती मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां पया दैत करीब खीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काल मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिन पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे हैं प्रभ दिखन थे तुम बड़ दाते जी जीन के तुम जान हो हम बिर थे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पों अर्प अरापों कोई मिले प्रभ मिल थे हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुम रह जन नानक प्रभ समरथे।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक

प्रयाय प्रयातो शरणाये नानक पीतावेन पीत अपनी भक्ति लाए हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत साढ़ विखद पाए माया मोह परम पै फूले सुखदारा सौंपी लगाई एक उत्तम पंथ हुने अंगुर संग एह मिरंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

पांडव मंडल पर पांडव जी को कथा दंत नांत तथा लो लो आकार जिव जिव हुकुम दिव दिवकार विखा विषय कर विचार नानक कथना करड़ा सार।

भोगे। नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी संद दल प्रसाद अरूप है अनूप है जू है पोहा लेखा पेखा नाम है कामा देहा पया जीता पीता त्रमानंद आन त्रिवर्ग सर्ग अनिल है अनाद है जया जाद है जन्म वर्ण है भूत है वर्ण है गंज है पांझ है दूध है जांझ है मीघर फीघा दंध है बंध है।

पापांग गात्मित पार गुण गण उदार गुण गण प्रणाम निरपैने काम आत दुत पर चांड मित गत अखंड लिसै कर्म अदृसै धर्म सर्व पर नाढ़िया आण डंड बढ़िया चाचरी छंद दल प्रसाद गोविंदे मकंदे उधारे पारी हरियं करियं निरनामे कामे भजंग प्रजात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर वासे चतर चकर वासे चतर चकर मान्या चतर चकर दान्या चाचरी छंद ना सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परया पवित्र प्रतिष्ठा अधिष्ठा दृष्टा कृष्ण।

अकाल भाई कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जो कि सब की हो वेदराय ब्रह्मा जो थी हो जवन काल सब लोग सवारा। नमस्कार श्री को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदरन को बल मवद की हो गगड़ के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चिट्ठी दे गुंज सुन चिट्ठी दे गुंज रसूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाई ते दुखी सुख पाई साधन के सुखी। एक एक की बीर बछान है गड़गड़ के बड़बड़ की जान है। जब उद करख करा कर दारा प्रजा दर्द तब दे अपार। जब यह कर कर दो गहूँ तुम मिल दे दर सब हूँ। जेते बदन सिर सब धारे आप अपनी बूझ उचार।

निरंकार का जीन तनह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पहन पहन देती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनुप रूपा रंग पयो राव कई पूपा अंडज जेरज सिद्ध जगीनी उत्पज खान बहोर रज दीनी कहूं भूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई जम पव आज जगाद स्वरूप से जम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग रो दोष जीते उठो तुझ पाता सकल मलेश करो रण काता जे आज तुझ तब सरणी परे तिनके दोष दुखता वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई कबार त्याए हैं ताके काल निकट न आए रक्षा हुई ताई सब काला दुष्ट रहित डर अंत काला कृपा दृष्ट दन जहन हरे हो ताके दावदन कम हरे हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शासव सके न कोई एक बार जंत मैं संभारा काल बाल ते ताई उबारा जैन नर नाम त्योहारो कहा दारिद दुष्ट दुख दे रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दल उबारी सर्वठारम हो सहाई दुष्ट दोख ते लेह बचाई राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावण आईया शब्द उदा गावो हरि के राम अंज निवसाया कह नानक आनंद है आनंद गुर ते पाया

अंत न कनहि लहिया राव। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाव। हम अज्ञान

भंग प्रसाद असम पहला महल पहले के लिखे तुम्हें राजे की धुनी श्लोक महला पहला।

दाता करता है आप तू तुस दे तरे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद कवाओ कर आसन दिठो चाओ कर आसन दिठो चाओ।

0: नानक सच ध्यान सच जो मर्द में तो कट निकट
1: बड़ी बजाइया सच ले बड़ी बजाइया ने सुखाऊ बड़ी बजाइया ने अलाऊ
0: बड़ी वड्याई पूछे सदा बड़ी वड्याई जा पूछना दात बड़ी वड्याई जाए आपे आप नानक न कठनी जाए चिंता करना कर बुर जाए
1: ना दूजा ये जब सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समायले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना भाने का जुले एक ना माया निवास दिल की आंख में जापी

पड़ी नानक जी उपाय कह लिखना में धर्म बहा लिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुनवस कड्डे जजमा लिया थां न पायन कूड़ियार मूका लै दो जगचा लिया तेरे नैर पैसे जिन गए हर गए से छगन वाले लिखना में धर्म बहा लिया लिखना में धर्म

पौड़ी ना तेरा नंकार है ना लये नरक न जाइए जो पिंड सब चिस्दा देखा दे आ गवाइए जो लोड़े चंगाया अपना कर पुनो सदाइए जो गरवाना पर हरे गर्वेश करेंगे आइए को रह न बढ़िए पाइए को रह।

0: दे मंगेश सगुना सोचरे संसार तोरंजारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार इखोंदा खा चले अथाऊं सिमा बिकाई कार जलथल जीना पुरिया लवा आसारा लंगार
1: तोरू आखे सुतुआ जाने तिना भी तेरी सार नानक भक्त दुख समायन सच नाम आधार सदानंद रहे दिन राती गुणवंतियां पछाण महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे सुनियार घर भांडे टाकियां जब एक रे सुतार जल जल हो बकड़ी जड़ जड़ तो यार मानो गुरु चंद्र ने किया।

बिन सतगुर के न पायो, बिन सतगुर के न पाया, सतगुर विपाप रखियन कर प्रगट आख सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मो चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे सोचित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

बोलना जी श्री वाहेगुरु पौड़ी फेर की संतोखई जिन सचो सच दयाया उन्हीं मंदे पैर न रखियो कर शुक्र धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

लक्ष्मण संग्राम रंग लक्ष्मी मध्या ध्यान पर पास पुराण चुनाव किया।

श्रीवागुरु पड़ी दान मंडा तलिखा जंगल समस्त लाइया चूड़ा लाल छड़िया हो एक मन लखाइया चलते रहे पाइया जो ही कर कमाइया जो है पूरा लिखा तंदूर।

0: सूरज पंडित हित में पूजे पंडे करे प्यार गर्मी बंद करेगा आवे मुंडे लोक द्वार जस्ती सदा में जुट न जाने छद बहे दरबार सब को पूरा तो हम घट में कोई आख है सब परवाना कुछ पाइए तनान को ले आ जाता
1: है सुन मर के सोए तुम छल मारिया

दुर्कर्म जना को तुटाया तुम तिन्नी खसम दे आया इन जनता के बस कुछ नहीं तुझ व्यक्ति जब तो पाया इतना ही तू बोले इसका तो तुझ खोया गुरु कृपा से जाने जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सच

बोलना जिस रिवाजू पड़ी पड़िया हो गुनागार तू सब मारिये जी हाँ खाले खालना तेरे होना पचारिये ऐसी कला न छेड़िए जिधर

0: पारजात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया
1: बल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलोदया नील दस्तर ले कपड़े पहरे

वाहगुरु पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जाना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भांग दे राजे अगे जावना नंगा दो जब चालिया तंज से खड़ा डरावना कर औगण पछो पावना कर औगण पछो।

0: कराए तीसो सेवा करे हुकुम मनाए तीसुमने होवे करुणा पाखस मेरा कामल पाए कसम मारे सो करे मन चिन्ह आवा सो फल पाए थी सांबर जरवा पैंदा जाए थी पैंदा जाए थी पैंदा जाए थी
1: बोलना जी श्री वाहेगुरु पड़ी साहेब हो दयाल कृपा करो तो साहिकार कराए सी तो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक खसने का मल पाए सी खसने भावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी तंदर गए पैंता जाए सी तंदर गए।

बोलना जी श्री वाहेगुरु पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाई सोचन कडिये कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जय रहना नाई अत जगता।

सो चलती सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साए मनोज सारी है अपने हथी अपना ही ताज सवारी है अपना हथी अपना।

पड़ी, चाकुर लगे चाकरी जो चले खसने पाए, और मैं पिछली अगली वजह दुदूना खाए, खसने करे बरादरी फिर गए रतंदर पाए, बजो गवाए अगला मोमो पाना खाए, जिसका दिता खाना किसको ये सबा, नानक हुकम न चले नाल खसन चले यार।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी जिन तू साज संवार सिंगारिया बार विवस्ता तुझे प्यार है दूध बिरद भया ऊपर साक सैन एह निर्गुण गुण कछु न बूझे जेह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै जेह प्रसाद पीवे शीतल जला जेह प्रसाद भोगे सब रसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे।

अंध कूप में पतत विकराल, करतूत पशु की मानस जात, बाहर पेख अंतर मल माया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा।

जिस जन अपना हुक्म मनाया अगंत सौ अपनी देरास अपनी अमान कछ बाहर सा ले अपनी प्रतीत आप ही खोवे जिसकी वस्तिष आगे रखे उससे चौगुण करे निहार अनेक भांत माया के हेत बिरखी छाया सो रंग लावे जो दिसै सो चालन हार बताऊ सो जो लावे ने मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया मिथ्या राज जो बन धन माल मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा मिथ्या त्रो मोह अभिमान

0: मिथ्या चरण पर विकार को धावे,
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे,
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
1: मिथ्या बात लेत विकारा,
0: दिन बूझे मिथ्या सब है।

0: रहत अवर कछ अवर कमावत जानन हार प्रभु परवीन अवर उपदेश है अपना करे जिसके अंतर बसे निरंकार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता करो बेनती पार बिम सब जाने
1: अपना किया आपे
0: आपे आप करत नवेरा उपार स्यान सगल ते रहत जिस भाव है तिस ले लड़ लाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमक नेमक जप

0: अष्टपदी जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे जेह प्रसाद बसै सुख मंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना जेह प्रसाद रंग रस भोग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे जे प्रसाद सुख सेज सोई जय जे प्रसाद तुझ सब को मन जे प्रसाद तेरो रहता धर्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे जे प्रसाद अरोग कंचन देही जे प्रसाद तेरा ओला रहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके जे प्रसाद तुझ को न पहुँचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे जे प्रसाद अभूखन पहरी जय जे प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी जे प्रसाद बाग मिलक तना
1: अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई पिछे ध्याए जो एक अलख है जे प्रसाद करे पुन बोदान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात जे प्रसाद तेरी पत्र है जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद

0: साधू कह संग महल पहुँच
1: साध के संगत रह सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु कह कुर्बान
1: साध के संग सब कुल उधार।

अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, अवर उपाव सब नीत विसारो, करण कारण सो प्रभ समर्थ, यो धन संचो हो वो भगवंत, एक आश राखो मन माहे, जिस धन को चार कुंट उठता मैं, जिस सुख को नित बाश है मीत, जिस शोभा को करे भली करनी, अनक उपावी रोग न जाए, सर्व निधान में हर नाम निधान, मन पर बोधो हर कहनाए, ताको बिगन न लागे कोई, कल ताती ठंडा हर नाओ, ओ बिन से पूर्ण होए आसु, तित घर जाए बस है अविनाशी, तत् विचार कह जन साचा, आवा गौन मिते प्रभ सेव, यो रतन जन्म का होए उधार, अनक उपाव न छूटन हारे, हर की भगत करो मन लाए, संग न चालस तेरे तना, सुत मीत कुटम अर बनता, राज रंग माया विस्तार, अस हस्ती रथ सवारी।

0: हर की भगत करो मन मीत, चरण कमल राखो मन माहे,
1: जन्म जन्म के गिल बिखराहे,
0: आप जपो अवरा नाम जपावो, सार भूत सत हर को नाउ, गुण गावत तेरी उत्तर सुमैल, हो अचिंत बसै सुख नाल, छाड़ सियानप सगली मना।

0: सब एको साला है,
1: एक सिमर एको मलया है,
0: एक के गुण गाओ अनंत,
1: मंत्र जाप एक भगवंत,
0: एको एक एक हर आप,
1: पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप,
0: अनक विस्तार एक ते भय,
1: एक राज पराजित गए,
0: मन तन अंतर एक प्रभु राता,
1: गुरु प्रसाद ना

0: टूटा गंढ है।
1: गुरपुरे तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। साजन संत करो एह काम,
0: आज त्याग जपो हर नाम।
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अवर नाम जपावो।
1: भगत

0: मंदन अंतर ही तो आओ।
1: नेत्रों पेख दर सुख होए,
0: मन निश्चय काम चलत होए।
1: भगत जना के मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग।
1: एक वस्त दीजे कर मया,
0: गुरु प्रसाद नाम जप लया।
1: ताकी उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए।
1: प्रभ बख्शंद दीन दयाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, आद पुरख कारण।

अश्वदी जब अकार एव कछ न दृष्टेता जब धारी अपन सुन समाधि जब इच्छा वर्ण चिन्ह न ज्ञापत जब अपन आप पार ब्रह्म आपन खेल आप वर्ती जा जब होवत प्रभ केवल धनी जब एक हर अगम अपार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए जब आपे आप अपनी ज्योत धरे आपन चलत आप करने हार अब नासी सुख आपन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अवगित अगोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे आपन आप ही अचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता।

0: कवन मारे बाप मित्र सुत भाई।
1: जह सर्व कला आपे परवीन, जब आपन आप उर्धार है, जह आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: कौन ठाकुर कौन करिया चेरा,
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: अपनी गत जानो आप,
1: जह असल अशेद अभेद समाया, आपस को आपे आदेश,
0: उनका नाम ही परवेश,
1: जह एक है एक एक भगवंता,
0: कौन चिंतित लागे चिंता,
1: जह आपन आप पतियारा,
0: कौन कथा कौन सुनने हारा,
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, जह आप रच्यो पर पंच अकार,
0: गुण मैं तीनो विस्तार,
1: पाप पुन ते भई कहावत, आल जाल माया जंजाल,
0: मैं वो परम पैपार,
1: दुख सुख मान अपमान, अपन खेल आप कर देखे, जह अवगत भगत तह आप, दोहो पाख का आपे तनी,
0: उनकी शोभा उन्हु
1: आपे कौतक करे अनत जोज,

0: इस पे होए तो ना ही बुरा, आप भला कर तू तत निकी,
1: आप पे जाने अपने जी की,
0: आप साचदारी सब

सास सास सिमरो गोविंद आस अनित त्यागो तरंग आप छोड़ बेनती करो हर धन के भर ले हो भंडार हेम कुशल सहज आनंद नरक निवार उधारो जियो चित चित वो

0: प्रगट सब लोए,
1: सबसे ऊंच पाए स्थान
0: और न हो गए आवन जान,
1: हरदन खाट चले जन सोए,
0: नानक जिसे प्राप्त होए,
1: खेम शांत रिद्ध नव नित,
0: बुद्ध ज्ञान सब तय सिद्ध,
1: विद्या तप योग प्रभ ध्यान,
0: ज्ञान से उत्तम स्नान,
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: है भाई मनी सिंह जी, उन्हां दी शहादत वाला दिन आप जी मना रहे हो। इसे संबंध विच ही सन्मान योग भाई साहब भाई सतविंदर सिंह जी, भाई हरविंदर सिंह जी, इलाही गुरबाणी दा कीर्तन आप जी नू श्रवण करा के गए। आओ, जितना समा प्रबंधक वीरा ने उलीकिया है, मैं यतन करा उसे विच सीमित रह के सिर्फ संखेप जै कुछ अखर भाई साहब दे जीवन दे मुतलक उन्हां दी शहादत दे संबंध विच कह सका, क्योंकि शब्द वर्तना बहुत सुखैन है पर महसूस करना इस तो बिल्कुल विपरीत है। बंद बंद कटा लेना, एक खिन च मैं शब्द कह दिता है, पर किते नाखुन नौ काट दिया, कच्चा नौ उंगल दा कटिया जाए ते बंदे नू कई दिन रात चैन नहीं आउंदा, ते जिस दा बंद बंद कटिया गया है उस दी गल करनी इतनी आसान नहीं। करो कृपा, आप जितने गुरु चरणा च बैठे हो असीस बख्शो। भाई साहब दे चरणा वल आप कहोगे गुरु हजूरी च शब्द कह दिते चरण उन्हां दे, क्योंकि असी अरदास विच रोज उन्हां दा ध्यान धरने आ, अरदास वाहिगुरु अगे करने आ, पर ध्यान विच असी शहीदां नू याद करने आ जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म खेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाईयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। उन्हां दी कमाई दा ध्यान धरी गया जी, जदों उन्हां दी कमाई दा ध्यान धरांगे ते वाहिगुरु चेते आएगा, क्योंकि उन्होंने कमाई ही कली वाहिगुरु दी कीती। करो कृपा साध संगत, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज राग तनासरी विच हजूर दा उचारण कीता होया शब्द आप जी ने सरवण कीता है। भाई साहब ने कीर्तन दी समाप्ति शब्द ते कीती, जा को हर रंग लागो इस जुग में सो कईयत है सूरा। गुरु ग्रंथ साहब दी अमृत बाणी विच दो तरह दे सूरमियां दा जिक्र कीता गया। एक सूरमा सी उस नूं कहने आ जेड़ा मैदाने जंग विच मजलूम दी खातर, ईमान दी खातर, धर्म दी खातर अपने शरीर दा बलिदान दे दे, तन दा ठीकरा पांदा, असी कहने आ इह सूरमा है। पर हजूर ने केवल रण तत्ते विच जूझन वाले नूं सूरमा नहीं कहा। जे केवल आदमी दियां बाहवां च बल है, ओ मैदाने जंग विच जूझ के दुश्मन दे मुंह दंद खट्टे कर दिंदा है, असी कहिए ओ सूरमा। तन गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने कदाचित नहीं, जे ओदे अंदर परमात्मा दी भगती नहीं, इहो जिहा सूरमा भी जवारी दी तरह सब कुछ हार के चला जांदा। एक सवैया है, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसार सुना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरै मन में कर पर्वत हंग हले ना खलेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। ओ सूर में जेड़े पहाड़ दी तरह अडोल होण, पहाड़ ता खिल जाए पर ओ खिलन ना। ओ सूरमे जेड़े मैदाने जंग विच दुश्मन नू इस तरह मरोड़ के रख देन कि ओदा नामो निशान मिट जाए, पर इन्नी ताकत होण दे बावजूद जे वाहिगुरु दा सिमरन नहीं, तन गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे इहो जिहा बंदा जिंदगी दी बाजी हार के चला गया। जदों सी आए ते इथों दे गुरु के कीर्तनीय साहब वो एक श्लोक पढ़ रहे सन, मैं सिर्फ संखेप जिहा शब्द कहने ने। वो श्लोक सी मारू राग विच भगत कबीर साहब दा। दो श्लोक ने, दो तरह के सुरमे बाणी ने मन्ने ने। एक सुरमा वो जिहड़ा मैदाने जंग विच जूझदा है, जित जाए जा मारिया जाए वह सुरमा है। जित जाए तो जेतू, मारिया जाए तो शहीद। पर गुरमुखो एक सुरमा होवे जिन्हें ज्यौंदे जी अपनिया मन दियां इच्छावां नूं जित लिया, जिन्हें ज्यौंदे जी अपने शरीर दे इंद्रे जित लै, हकीकत विच ओह भी सुरमा है। आ जदों दो श्लोक पढ़े गए, थोड़े जो देसी अखरी अर्थ कर लिए, ते गुरु दे घर विच दो तरह के सुरमे जे मन्ने ने, पर जित शरीर विच दोनों सुरमियां वाले गुण ने, उहनूं गुरु घर दे विच संत सिपाही कहा जांदा है। संत अपने अंदर नूं जितण दी सुरमगति है, ते सुरमा सिपाही बाहर मैदाने विच जंग विच जूझण दा नाम है। शब्द भाई साहब ने पढ़िया सी, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने कहो। गगन दा अर्थ की है? असी आकाश करांगे, गगन आसमान करांगे। देखो इस तोक नूं सट ना पाइए। गगन दमामा बाजियो परयो निशाने गाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। आकाश विच किन्ने ने नगारा वजा, उस नगारे दी चोट ओदी आवाज ने जग्यासू नूं हुशियार कीता। कहन लगे हुण वक्त आ गई तेरा जूझण दा, लड़न दा, ते जे अज लड़ के बाजी जित गयो, सच जानी तू सूरमा कहाएगा। ओ आकाश केड़ा है? अखरी अर्थ ही ने गगन दमामा बाजियो। दमामा मीन्स नगारा। आकाश विच नगारा वजिया, आकाश विच तां बदल गजदा, नगारे तां धरती ते वजदे ने। पर गुरबाणी कह रही है गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। जदों कोई शब्द दा अभ्यास करदा, शब्द दी कमाई करदा, ते आकाश दा से दसम द्वार ओदा अंदर दा दसम द्वार खुलदा, तो उत्थे इक शब्द दी चोट वजदी है प्यारियो, जिहदे सामने नगारे दी चोट भी मध्यम पै जांदी। कहिंदे अंदर दा शब्द जपदियां दसम द्वार विच इक शब्द दी आवाज सुनाई दित्ती, ते जिन्नी देर तक दसम द्वार विच उस शब्द नूं कोई सुणदा नहीं, उन्नी देर तक शरीर दे इंद्रियां दे मोह तों नहीं उपर उठ सकेगा। क्योंकि दुनिया दा रस तां छुटेगा जे नाम दा रस आएगा। जे नाम दा रस नहीं ते दुनिया दा रस हट करके छड्डांगे, इंद्रे दी चखणगे पर मन तां रस नूं चेते करी जाएगा। एक नुक्ता है, बाबा फरीद पावे प्रकरण नहीं मेरा है रस बंदी। जिस दिन वह भगती वल तुरे, बिल्कुल परमात्मा नूं पाण लई नहीं तुरे। तरू ते भगत फरीद दोनों की भगती की शुरुआत बिल्कुल परमात्मा नूं पाण दी नहीं सी। तरू नूं बाप की गोद विचों मतरई मां ने बाहर कढ़िया, ते उन्हें अपनी मां नूं पुछिया सी कि जिस सिंघासन ते बैठ के मेरा बाप राज करदा है, तख्त मैनू किवें मिल सकदा है? उन्हें नहीं कहा परमात्मा किवें मिल सकदा है। देखो मैं गुरमत दे दायरे विच रह के गल करांगा। कहन लगी पुत्तर क्यों? कहिंदा मां मैनू दस तू राणी है कि गोली है? उन्हें कहा बच्चे दस होया कि तेनू? कहिंदा जे तां राणी है ते मैनू बाप दी गोद विचों दूसरी मां ने बाहों खिंच के बाहर क्यों सुटिया है, ते अज मेरी इन्नी बेइज्जती होई है, मैनू दस मैं बाप दा तख्त किवें हासिल कर सकना? भाई गुरदास दे शब्द ने ध्रुव हसदा कर आया, कर प्यार प्यो कुछर लिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरई कीता, डड्डो लिक्का मां पूछे तू सा वाणी है के सरिता। मां ने क्या सा वाणी का जन्म दी नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। अगे ध्रुव कहिंदा मां किस उद्दम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता। मेनू दस राज किवें मिलेगा दुश्मन मित्र किवें बनगे ताकत आवेगी ते दुश्मन चुकणगे। मां बड़ी सियाणी सी उहने बाप दे विरुद्ध बगावत कर ली नहीं क्या। उन्हें क्या पुत्र जे राज पाना चाहने ते फिर एक काम कर परमेश्वर आराधी है जिद्दू होई है पत पुनीता जे परमात्मा दी बंदगी करेगा ए राज तेरे पैरां दे विच रुलदे होण। ध्रुव तुरिया पर जिस वेले बाप अद्धा राज देन लगा उन्हें क्या वाह परमात्मा अदे ता चार कर्म फिजिकल शरीरक तौर ते तुरिया ते अद्धा राज मेरे पैरां च हुंदा हुण राज नहीं हुण उहदे कोल जावांगा जिहड़े करोड़ां बादशाह पैदा करन वाला। देखो एक तरीका सी। दूजा बाबा फरीद ओ जदो तुरे ने मां ने इबादत लई नमाज नहीं कहा उन्हां कहा सी मां मैनू दस नमाज पढ़न लई कहनी है रब देंदा की है। एको गल कही सी बेटा शक्कर ध्यान दे आज जीव दे रस नू लैके तुरिया बच्चा पर जिस दिन इबादत करदियां करदियां परमात्मा दी बंदगी दा स्वाद आया उसके महापुरुष ने कहा दुनिया के लोगों शुरुआत मेरी शक्कर सी पर अज जिस मुकाम ते मैं पहुंच गया मैं तुहानू सच दसा दुनिया का कोई भी मिठा रब दे नाम की बराबरी नहीं कर सकता जो ओदे विच रस ओ दुनिया विच बिल्कुल नहीं। उन्हां दी शलोक है कि शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यों माझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद पर चेते रखियो। जिन्नी देर तक रब दा रस नहीं आया उन्नी देर तक शक्कर ही स्वादी लगदी। मैं अपने नुक्ते वल आवां गगन दमामा बाजियो दसम द्वार विच इक शब्द वजिया परयो निशाने कहो ऐ टिकाने उत्ते जख्म होया निशान टिकाने ते वे। कहन लगे हुण इक काम कर खेत जो मांडियो सूरमा मांडियो दा अर्थ जूझना खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ हुण देख तू इन्ना जूझ के अपने अंदर दे विषय वासनावां उत्ते काबू पा जा ते जदो अंदर नू फतेह कर लिया ओ संत बनिया ते जदो संत बन के तुरिया फिर उन्हें शरीर दा बलिदान दिता। अगला श्लोक सी सूरां सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत। पहला श्लोक है अंदर नू जितन दा दूजा श्लोक है मजलूम दी खातर धर्म दी खातर जूझना। सूरां सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मरे। सच जानू कबीर साहब ने कहा ते भाई मनी सिंह ने दे अर्थ कीते पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। छलो शब्द सी जाको हर रंग लागो इस जुग में जुग दा अर्थ संसार। इथे रंग दा अर्थ असी परमात्मा दे नाम दा रंग करांगे क्योंकि बाणी ने दो रंग मन्ने ने एक मजीत दा दूजा कुसंबे दा। कुसंबड़ा जेड़ा है वह संसारी रंग है ते मजीत जो है वह निरंकारी रंग है। कुसंबे दा रंग वासना दा रंग है मजीत दा रंग परमात्मा दी इबादत दा रंग है। कुसंबे दा रंग संसार दे रिश्तियां दा रंग है मजीत दा रंग निरंकार दे संबंध दा रंग है। महाराज कहिंदे ने जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणे जिन्हें अपने अंदर नू जिते है सगल वस ताक है हर चीज ओदी गुलाम बन गई जिन्हें अपना आप जित लिया। आत्म जिने सगल वस ताक है जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग। देखो दो शब्द आ गए जाको हर रंग हुण आ गया ठाकुर गाइए आत्म रंग। इत्थे रंग दर ते प्रेम जे ठाकुर नू गाउणा है ते प्रेम विच भिज के गा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग जेड़े नाम जपदे ने साईं विच समा गए। जन के चरण वस है मेरा हीर है गुरु अर्जुन साहब कहने एको जै सूरमे दे चरण मेरे हिरदे विच वस जा। एको जै गुरमुख दा चरण मेरे अंदर स्पर्श कर जाए जन के चरण वसा मेरे हीयर है संग पुनीता देखी ओदे चरणा दी स्पर्शता नल मेरा तन पवित्र हो जाएगा। जन की धूड़ देहो कृपा निध नानक कह सोखे ही मेरे लिए सोखे वे के परमात्मा को जे सूरमे दे चरणा दी धूड़ दे। आपां फोकस करिए अपने आप नूं केंद्रित करिए भाई साहिब भाई मनी सिंह दे संबंध विच। अज तुसी शहीदी मना रहे हो गुरु सवारे हो उस गुरमुख दे इतिहास नूं पढ़दे आं मन तन असी उन्हां महापुरखां दे संबंध विच कुछ कहिए प्यारे इंज लगदा है कि जिवें सूरज नूं अख विच आपां समान दा यतन करने नहीं। भाई साहिब भाई मनी सिंह हुणां दे परिवार दे तकरीबन दो तीन पीढ़ियां दे 65 जी शहीद ने। ध्यान दिया जे गिनती सिर्फ डिटेल च नहीं सब तो पहली गल जे नजदीक दा रिश्ता देखना है भाई साहिब भाई मनी सिंह जी दे दादा गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जदों अमृतसर दी पहली जंग लड़ी भाई बल्लू जी ओदे विच शहीद होए थे। भाई मनी सिंह दे पिता दा नाम सी भाई माई दास। अपने बाप दी शहादत तो बाद भाई मती दास अपने पुत्रां नूं लै के कीरतपुर साहिब आए। भाई मनी सिंह उन्होंने मत्था टेकिया ते सतवें गुरदेव ने देख के पुछया माई दास इस पुत्र दा नाम की रखे है। कहन लगे महाराज मनिया क्योंकि उदो अमृतपान नहीं कीता मनिया। कहन लगे ये मनिया गुनिया जग होवो। गुरु हर साहिब कहन लगे मणि दी तरह चमकेगा इस कोल इन्ने गुण होणगे मणि चमक दिए सिर्फ रात नूं चानण देंदी है एदा जीवन इन्ना चमकेगा कि अत दी हनेरे विच भी इहदे जीवन तो लोग सेध लिया करन। भाई साहब दे दादा जी शहीद भाई मनी सिंह होनी 12 प्यार भरा ने। आप जी ने हो सकता पढ़ी होवे हिस्ट्री क्योंकि तुसी अज उन्हां नूं याद कर रहे हो। 12 भरा ने 12 विचों 11 भरा शहीद होए ने। जिस भाई साहब भाई दयाला जी नूं चांदनी चौंक विच गुरु तेग बहादुर जी दे सामने उबलदी देग विच बिठाया गया ओ भाई साहब भाई दयाला सिंह जी भाई मनी सिंह दे वड्डे भरा ने सक्के भरा ने। जिस लखी शाह वणजारे ने गुरु तेग बहादुर जी दे धड़ दा संस्कार कीता ओ लखी शाह वणजारा भाई साहब भाई मनी सिंह जी दा सौरा है। उहनां दी बेटी बीबी सीतोबाई भाई मनी सिंह नाल उहदा विआह होया है। आप जी दे ग्यात लई 12 विचों 11 भरा शहीद 10 पुत्र शहीद ते 7 पोतरे शहीद ने भाई मनी सिंह जी। 29 जी इन्ने घर दे बंदे ने 3 पीढ़ियां विच दादे तो लैके पोतियां पड़पोतियां तक। जिस भाई बचित्र सिंह ने नागनी मार के खाथी दे सिर दियां तवियां पार दित्तियां ओ भाई बचित्र सिंह भाई मनी सिंह दे पुत्र सन। जिस भाई उदय सिंह ने सरसा नदी पार करदिया गुरु तेग गुरु गोबिंद सिंह जी दे काफले दा हजूर ने दीवान लाया ते उन्हें पहरा दिता राजे केसरी चंद दा सिर वड्डिया भाई उदय सिंह ने ते सरसा दे किनारे भाई साहब शहीद होए ओ भाई उदय सिंह जी भाई मनी सिंह दे पुत्र सन। डिटेल च नहीं मैं जाना क्योंकि इहदे लई बहुत समा चाहीदा है। सिर्फ संखेप जिहा भाई साहिब भाई मनी सिंह गुरु कलगीधर जी दे चरणां विचों उहनां अमृत दी दात लई मनीए तो भाई मनी सिंह बने। हजूर दे कोल आनंदपुर साहिब उहनां तलीम लई ओह फारसी दे संस्कृत दे ब्रिज भाषा दे बहुत उच्चे विद्वान सन। अज भी एक जन्म साखी दा नाम है उहदा भाई मनी सिंह वाली जन्म साखी ओह लिखारी सन। भाई मनी सिंह आ जिहड़े भाई गुरदास दियां 12 विच सिखां दी गिनती आउंदी है पहले पातशाह तो लै के 6वें पातशाह तक उन्हें एक ग्रंथ लिखिया उहदा नाम है सिखां दी भगतमाल कलम दे धनी सन। भाई मनी सिंह उहनी किन्ने भरोसे वाले सन गुरु कलगीधर जी दे लई ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਚੀ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪੰਛੀ ਚਾਤ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ 5-7 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਨ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਤ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁੱਚ ਚਾਰ ਮੂਵੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਰੁਕੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬੀੜ, ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲਾ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਖਮਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਸੁਣਾਏ। ਉਸੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਸੰਗਤ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇਗਾ, ਸਿਰ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਔਖੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਏ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਇਹ ਦਿਲ ਧਾਰ ਕੇ, ਖਚੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਚਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਬਰਖ ਕੋਈ, ਜੁੱਧ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇਸ ਆ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਨਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਵਨ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ ਕਬ ਕੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਟਕਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਤੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਛਹਿਰਾ, ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜਲਾਦ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੋਕਾ ਐਸ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਠਾਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਆਏ, ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਆਏ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਆਏ, ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ। ਬੰਦ ਦਰਦ आप समझते हो जिथे दो खड़ियां जुड़िया ने। कह लगे बंद इथों शुरू नहीं हुंदा, तेनू गिनती नहीं आती, बंद इथों शुरू हुंदा है, तेनू बंद बंद कटण का हुक्म है। ते मेरे गुरु ने कहा बंद बंद कटका के भी तेरा सिदक नहीं डोलेगा, तू बंद बंद कटण आया ते मैं बंद बंद कटवाण आया। जदों शब्द गए जलाब दे मन च आया कुछ सवाल कर लै, कहिंदा बाबा तेरे चेहरे ते ना नूर है, सामने मौत है, तेन दिसदा नहीं पिया, मैं टोका तेज पिया करना, एदे नाल मैं तेरे टुकड़े करने ने, ए कोई कहानी नहीं, तेरे नाल वापरन वाला है। कहन लगे मैं खुश तावा इथे चार तीन कबित ने। कहन लगे अंग अंग ते मेरे तू कातल खंजर जदो चलाएगा। प्रिंसिपल गंगा सिंहणा लिखे, अंग अंग ते मेरे तू कातल खंजर जदो चलाएगा, कट कट के बंद तू मेरे धरती जदो वगाएगा, ओ दर्द प्याले भर भर के असी जाम वांग पी जावांगे, सुन कातल आपां रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। कहने तू आ तां सही मेरे वल, तू बंद बंद कटेगा, ते जिन्हों दर्द तू कहना पे, जेड़े टोके दा मैनू डर देना पे, मैं इस दर्द नू जाम दी तरह पी जाऊंगा। जलाद ने कहा किंदा हद होगी कि ए कितों तुसी सिखिया भी बंद बंद कटना पीड़ा भी दर्द दा प्याला, ते दर्द दा प्याला तुसी मिठा जान के पी गए, तुहानू डर क्यों नहीं लगदा। अगे भाई साहब ने कहा सूल सुराई खंजर प्याला जिसने आग सुनाया है, बिंग कसाइयां दा सहना जिन्ने सद इश्क दा लाया के, ओ उस मुर्शिद दे चेले आं, ए साबित कर दिखलावांगे, सुन कातल आपां रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। कहिंदा मैं उस बापू दा पुत्तर हां जिन्हें अपने पुत्र शहीद करवा के कहा सी सूल सुराई खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। जलाद सचमुच कंब गया, उन्हें अखीर पुछया, कहन लगा बाबा तेनू बंद बंद कटान दा दर्द नहीं, तेनू मौत दा भय नहीं, मैं हैरान हां तू किस मिट्टी दा बने। भाई साहब ने कहा तू मेरे ते सवाल करी जाना, मैं तेरे तो पूछा। जलाद कहिंदा दसो, कहिंदा बंद बंद कटाना बड़ा मुश्किल है, पर कट्टण वाले दा भी दिल पत्थर वर्गा चाहिदा, क्योंकि पत्थर दिल तो बिना बंद बंद नहीं कटिया जांदा। आखिर तू बंद बंद कट्टण आया, हथियारा बन के आया, मेरे टुकड़े करना आया, तेनू की मिलना है। कहन लगा बाबा सलीए तेवे, मैं पुश्ती पुश्त दर पुश्त सी जलाद हां, तेरे मैं टुकड़े करांगा, आ टोकरे पए ने तेरे टुकड़े कर करके टोकरे च पाई जाणगे, ते जदों शाम तक तेरे पूरे तन दे टुकड़े नाल मैं टोकरे भर देंगा, ते मैनू एक टोकरी आटे दी मिलेगी अपने बच्चियां नू रोटी खवान दे, मैनू आ कुछ मिलना है, मैं रोटी दी खातर तेरे टुकड़े कर लगावा। भाई साहब हस्ते कहन लगे बस एथी तेरे विच ते मेरे विच अंतर कह, तू रोटी दी खातर टुकड़े, रोटी दी खातर मेरे टुकड़े करना है, तू टुकड़े करके टोकरे च मास पा के घर नू जाएगा, ते चेते रखी मेरे टुकड़े मास दे टोकरे च पए होणगे, मेरा अंदर वाला गुरु गोबिंद सिंह दी गोद विच बैठा होगा। बस इना फर्क है। अखीर ले उन्हां शब्द कहसन, तू आखे टुकड़े दा नौकर, मालक हुक्म मनाना वा, मैं जीवन दा मांगत जिस दा, तिस नू प्यार रजाना वा, ओ तेरी तलब रुपये आपां जीवन पदवी पावांगे, सुन कातल आपां रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। सच भाई साहब दी पहला बंद इथों कटिया गया, कहना सौखा है गुरमुखो पहला बंद कटिया, अंज जिवें खून दा परनाला वगन लगा, एक एक उंगला बंद बंद कटी गए। भाई साहब ने सुखमनी साहब शुरू कर दिता, गुरमुखो पूरे दा पूरा सुखमनी साहब क्या जानदा है कि भाई साहब ने टुकड़े हुंदिया हुंदिया पढ़ दिता, ते ओ बंद कटन लगा है, उन्हें टोका मारिया, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੂ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਤ ਬਿਸਮ ਪਰ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗੰਤ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਾਂਕੀ ਏਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਾਰ ਟੋਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਆਏ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਾਣੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारी सत संगी जनों

0: का घड़ी ना बैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। कईयां नूं जिउंदिया चिंता नहीं पर मरदिया चिंता भासदी। एक बेनती करके आया, बंदा माता दे उधर तो विकास शुरू कर दे पर बुढ़ेपे ते आके पिता दा यात्रा शुरू कर दिंदा। माता दे उधर विच यह जीव चाहता है कदों वक्त मिले मैं इस विचों बंद खलासी मेरी होवे। ते बाणी ने तो यह इशारे किते अध्यात्मकवाद ने रूहानियत ने कहा कि बंदा वादा करके आया पर विचों गर्भ है निकल आया खसम विसार दुनी चितलाया दूजिया पैर रहन कह बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान। जन्म तो बाद जो होश आउंदी है ते निक्का जा न्याणा मां की गोद विच उछल रहे खेल देखो बच्चियां नू देख के मैं नहीं खेडा। जदों खेडन जोगा हुंदा फिर बाहर दौड़दियां नू देख के चाहता मैं घरों बाहर निकला विकास चाहता अगां वधां। जदों खेडन लगा स्कूल विच गया फिर आने वाले दिनों के जवानी के सुपने लै मैं जवान हो जा। जवानी विच कमाई करन तुरिया कि मैं इन्ना कुछ कमावांगा बुढ़ेपे विच सुख नाल आराम नाल दिन कढ़ांगा। उधर विच जन्म लई उतावला जन्म तो बाद खेलन लई उतावला खेलन तो बाद जवानी की दहलीज ते पहुंचन लई उतावला जवानी तो बाद टिकर के बुढ़ेपे के दिन कढ़न लई। पर जदों बुढ़ेपा आउंदा उदों मौत की गल नहीं करदा उदों फिर जवानी भी करदा क्योंकि उत्थे आके बंदा रुक जांदा मौत दिस दी पई सामने। यही कारण अक्सर में खिमा करो अक्सर 90% बजुर्ग बाबे वह अपने जिथे बहनगे जवानी की गल करनगे मौत की नहीं करनगे क्योंकि सामने पड़ा मौत है। क्यों गुरु ने कहा तू बुढ़ा है तू बच्चा नहीं। जेड़ी गल बुढ़ेपे विच जाके कहनी सी कि मौत तो किवें बचिए ते तू 12 साल की उम्र च पूछना पै कि मौत तो किवें बंद खलासी होवे। तू बच्चा नहीं तू बुढ़ा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते एक चिंता किसे भागा वाले भी लग जाए कि सारी जिंदगी लंघ गई काम विच क्रोध विच ना पोथी फड़ी ना कीर्तन सुनिया ना बाणी पढ़ी हुण की बनेगा। महाराज जी ने कहा बाणी विच अजे इलाज है। हुण भी 4 साल जिहड़े बचे ने ना इनू पिछलियां दे पछतावे च तरबाह ना कर लै वर्तमान विच जीए। पिछले दी याद लिया लिया के वर्तमान ना खत्म कर काम क्रोध मोहवश किया किरपन लोभ प्यार चारे किरलिक उन अग कीवे कोआ असुर संघार पोथी गीत कबित के कदे ना करन धरिया। बाणी चिंता मिटावेगी चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निमक सिमरत धरिया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन आप जी गुरगद्दी पुरब मनान जा रहे हो। असली मनाना ए जे सारे आप पाठ करो। मैं उस दिन बेनती की सी असी कहेंगे सानू पाठ शुद्ध नहीं आता। बड़ा सोहना तरीका है कंप्यूटर से टैक्सट मिल जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का ते पाठ कीतियां सीडियां भी मिल जांदियां ते आपां रोज 10 मिनट या 3-3, 4-4, 5-5 घंटे कंप्यूटर से बैठने ते जे उधर अपने कलां नूं ला के पाठ सुनी जाइए ते टैक्स्ट राही अखां राही देखी जाइए ते गुरमुखो नाले तां संथिया होई जाएगी शुद्ध उचारण दा पता लगेगा ते नाले गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ी जाएगी। बड़ा सोहना एक तरीका है जिहड़े क्योंकि कई थावां ते आप जी बैठे हो नहीं कोई उत्थे बाणी पढ़ाण वाला नहीं संथिया कराण वाला यह भी तरीका है। किसे भी तरीके नाल जे आपां जुड़ सकने हां आप सारे सहज पाठ करो ते टेक के गुरु ग्रंथ साहिब नाल अपना रिलेशन बनाइए। ये तो है भी गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ने पर जेड़े च रिश्ते ने तू मेरी मां है तू मेरा बाप है तू मेरा मित्र है तू मेरा मालक है तू मेरा दाता है और रिलेशन और रिश्ते तुर अंदर तो बनाइए। जे अपनी मां नूं पुकारिया अंदर ममता नाल भर जांदा है ते गुरु नूं मां कहिंदे अंदर प्यार क्यों ना पैदा हो। ज्यों ज्यों ओ रिश्ता साडा बनेगा फिर बंदा खब्बे सज्जे नूं छड के गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां नाल जुड़ेगा। मेरे बाबे ने पहले जामे च यही गल कही सी ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
1: ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਕੇਰਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CIFK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

इस हत्याकांड की खबर सुन के सारे देश में गुस्से की अग फैल गई। गभरूआ ने सोचा जे जलियांवाले बाग का बदला ना लिया तो सारा देश जलियांवाला बाग बन जाएगा। देश नूं इक भयानक तबाही तों बचाउण वास्ते हर कुर्बानी करन दा तन कीता। अखबारां विच इक रिपोर्ट छपी कि जलियांवाले बाग दा असली दोषी सर माइकल अडवाल है। इस रिपोर्ट नूं सरदार ऊधम सिंह ने पढ़िया, उसके दिल का सारा चैन लुटिया गया। उसकी जख्मी आत्मा विचों आवाज आई, मेरे देश का वैरी मेरा वैरी है, इस नूं कीते हुए अपराध की सजा मिलनी चाहिए है। मेरा देश लहू लुहान हो रहा हो, मैं आराम की जिंदगी बसर करा, मेरी जमीर मैनू माफ नहीं करेगी। जदों तक इस बुचड़ का अंत नहीं होंदा मैं सुख का सह नहीं लवांगा। इसने कसम खाधी, अडवाल तैनू ऐसा सब दिखाऊं तेरा अंजाम देख के दुनिया कंब जाएगी। मेरे देश के लोगों का दुनिया खून इना सस्ता नहीं, जदों तक खून का बदला खून ना नहीं लेंदा उदों तक मेरी आत्मा क्रोध रहेगी। जलियांवाले बाग की पवित्र धरती से खड़ोता भारत मां का महान सपूत अपने वैरी तो खून का बदला खून ना लैण का प्रण करता है। जिसन चरण सिंह आलमगीर का ढाडी जत्था, जीत सिंह आलमगीर, बलविंदर सिंह मुल्लापुर, संगी मास्टर करनैल सिंह शेरपुरी तो ਸੁਣੋ।

ठाकुर पलाभा इनका मतलब जिनका लाभ लोभ ते अहंकार नहीं चुकया अजय पर गुरु ऊपर से नहीं आया वो वेखन वाले जी जन संतुल उपाय एक वेख प्रश्न आया ते जरा प्रश्न आया उनके विच आ चेंज आई कि लाभ लोभ ते अहंकार ये दो ही चीजा रुकावट महसूस की थी लाभ लोभ विचों मेरी निकल गई सब कुछ मेरा ते अहंकार विचों मैं निकल गया सब कुछ मैं ही हूं हंकारी पुरुष कहते सब कुछ मैं ही दोनों मेल देंगे तो लफत बनता मैं मेरी ये दरम्यान दीवार है अमृत रब सच अमृत है ते अमृत रूपी सच न हिरदे बसाने लिए दरम्यान हों हों हो, मैं विचों खो गए इसलिए गुरु को जदों परछन आता है ना सिख जदों भाव गुरु की दीक्षा लैन आता निरा देख नहीं गरीबा चक मार अंदर एक कौड़ी सच्चाई सानू मननी पेगी साडे विच्चों समेत मेरे बहुतात लोग ऐसे ने जिहड़े केवल देखण ही आउंदे गुरु तो दीक्षा रोज दे जांदा गुरु रोज समझाई जांदा असीं दीक्षा लैके किन्ने क जाने किन्ने क लोग आ जिहड़ा गुरु दीक्षा देवे ते असीं रोज पल्ले बन लै जाईए मैं कहि रही थी आखिर जिंदगी दे 20-30 साल ते सानू गुरुद्वारे आउंदियां गुजर ही जाने ना कुछ जीवन ऐसे उम्र दे मुताबिक गुरु ने रोज दीख्या दी हुक्मनामा की रोज दीख्या कोई ना कोई दीख्या तो है ना गुण की जे भला रोज के हुक्मनामे एक गुण ही साढ़े अंदर दीख्या रूप होकर चला जाता तो एक वरे के 365 दिन ने जिने वरे सानू आउंदिया बीतिया ने भला किन्ने क गुण साढ़े अंदर आ जाते किन्ने क औगुण दस जाते हर गुण न समाण लई कोई औगुण कढ़ना पैंदा क्योंकि गुण के अपोजिट कोई अवगुण है वो गुण ता ही समाउंदा है उनके अपोजिट जिहड़ा अवगुण है वह निकलता झूठ निकलेगा ता ही सच आएगा बदी निकलेगी ता ही नेकी आएगी जो जुल्म निकलेगा ता ही दया आएगी कोई एक चीज जाएगी ये सारी चेंज जड़ी है क्यों नहीं हो रही जे असी अपने आप को खुद प्रचोलिए कोई क्यों प्रचोले अपने आप को खुद प्रचोलिए तो सानू पता लग रहा असी देखिया शामिल हाँ दीख्या बिल्कुल सतगुरु देखिया दीख्या नहीं असी देखिया जरूर दीख्या बिल्कुल नहीं ना लें तो मैं अर्थ कर रहा था गुरु अपनी रस्ता तो आ कहते जी जंत सब तुद उपाय पर उन्होंने सारे विचों एक वेख परसन आया एक वो लोग ने कुछ हिस्सा वो है जेडे वेखते ने परसते ने जेडे वेख के परसते ने उन्हों की चेंज उन्हों की तब्दीली जी होंगी है जीवन की उनकी निशानी यह है कि लभ लोभ अहंकार चूका जदों लभ लोभ अहंकार चुक जाता है ना अंदरों उदों सतगुरु को बड़ा चंगा लगता है सतगुरु भला पाया दा अर्थ की है बहुत चंगा लगता है गुरु को सिख बड़ा चंगा लगता है जिहड़ा वेख के परसन आया तो परसिया उसने ऐसा कि लभ लोभ अहंकार अंदरों चुक गया जदों गुरु ने यह देखा बनया होया तब्दील होया सिख गुरु को बड़ा चंगा लगा लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह लगे फिर हुण गुरु टुट गया पात्र बन गए हूँ उसने हरी रूपी सच रूप अमृत अंदर टिकाया कह लगी

0: एक प्रश्न आया तक, जिस वेले प्रश्न आया तक होएगा, फिर लब लोभ अहंकार चुकेगा। ये भगतां दी जिहड़ी वक्री चाल है, जिहड़ी हार नहीं चुका सकता, इस खन्यो तिखी वालो निक्की मार्ग ते जिथे हर कोई नहीं चल सकता उत्थे चलना आ जाएगा। ते जिस वेले चलेगा लब लोभ अहंकार चुकेगा, फिर सतगुर भला सतगुरु नूं तू बहुत चंगा लगेगा, फिर टुट के तेरी झोली अमृत पावेगा। इउं जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया मनुख वड्डे भागों वाला होवेगा। इन्हां शब्दां नाल सिमां दा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

प्रभ मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई, गुर मिल चाले एक पाई, जा कौ गुर हर दिए सूखा, ता कौ बहुर न लाग है दुखा।